0: आज मैं हर गणित हकड़ थे 1 मिनट में दिव्य राज्य कोड़ाल में गणित में बात जो रहें दोने मैं तो के प्रोग्राम कर में वहाँ दखा दूँ मैं किंतु मामला की कावत के तेरे खिदमत दे तंत्रों का वैद गन जे है बदलता है को बह ने विस कहा था बदले का दे तेरे के बहुत ख्याल फल हो रही है मैं उनका मैंने को तो रंगल खोल दम जे है बने फिर गवाद एब ये तो मैं हर हाल उन धरने वाले हैं गवाद बे गवाद गन जे है विस कहा बदल का बे को तो बहुत रिदन कम बड़ों में जे दे तो ख्याल फल तो हिस्सा क्रम टका गुड़वा तीने तीने हाथ रे सुमें हाय सुमें हाय मैं आलम के नंबर के
1: एम दें कुल्ली खबरें मित्र आलम में बाला लान दे तो
0: आद मैं कुल्ली खबर है क्या खबर है बेटो बाला सीधा ने कुल्ली खबर के क्या धन्यवाद आने का खबर है दे तो
1: आद मैं गनुआ कड़ीरो कुरी के खबर गिना हूँ
0: नुआ कड़ीरो कुरी बच्ची है देंगे आकर का रिरोस ने हाथ जाते नो जी कहा द अगड़ीरो के वाहक तम बड़े दे तो तें बेरु की खबर है तंग कोले फहोगे खबर है इंगे तो कम कुल्ली खबर है नो मेरे गायन का तेरे सेमी टाइम रुक रहे इन्फेंटिनो का प्लेन इंग्रेस ब्रोज़ देखो कोले हद दाय फिर कम खबर है सुरही आलम ने फाह को दे मेरे तेरे सेमी टुकड़ी आलम मैं नो हकम फिर नहीं खबर है मैं
1: अरे ऐन में सालगो में गाड़ी न्यूज़ तक विस बाला लाना खाते जहाँ राज्य बेल दुनिया की मुहिम खबर तक विस तफसील को तेरे को बाला लाने गे तो अरे सब माउदो दरने वाला फालगो में कुरिया दाने में तो के माउदो की काबो तक की ती के खिदमत देता है तनु के कवायद गिरन जहे बदलता की को बाहे ऐ मा तिबे फ्रंगे ख्याल तक हिस्सा को लवा फालगो में मिहार मी हिकमत के बाहकुम फशान दे तो आदेग मतें हम आयुम बेरी ना हेलुम बेरिंग के तजुबा के फिलाल तक हिकमत तेरे बस्तों के जरिए एक जील तक फोर को दे उम्मीद नहीं आदि कुरी मगु बिना कुर मंग यही तेरे दे चक का वतुगा हिकमत के बस्तम में गुना कुर को फोनी को बुने ला बस्तम में वारा मान फो मानेंगे तो आदि साला
2: हिकमत के बस

0: थुरास थुरास
1: थुरास ऐ तारीका अहर मेंगे बहा सगाफता आधा का आधा के तेरे का आधा बावर घंटे तक हुरे अड़वा हालम बैनम ता
2: हाँ वारा बैनो
3: दिव्यराज्य का ट्यून कोला अंगार दो घावीर फाहिज जहर बुरास दो घावीर हाथरोगड़ फनेरा का अधि आदित दो घावीर फाहिज जहर हमें कन दिव्यराज्य के आड़ों

0: मुन्ना को बाकी ही ना के देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कोम वड़ा में के दक काफ़ूंग अता
2: मुन्ना थी है बुरको वेंडना हिंका में ने अफन थी कंग कोलन्ना
1: तिकु दुं हाउ दाई रंगल लाए तिहं मुन्ना एक ही आहो हाल बला फे मुन्ना रकांग कंग को देन्ना है दी मुन्ना वरहा उपावे

0: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস কুরআফ হবে, আলা ওয়া ইন্নী উতীতুল কুরআনা ওয়া মিছলুহু মা মানি দন্নাশিফ আদি হামাকাশওয়ারুম তিমান রাসূলা ইবানি কুরআন দেবি ফাইব আদি ইয়াইকু হাম ইফাদা এহেন ইচ্চবস দেবি এবহি একালে গফানুগে সুন্নতে।
1: ಮೀ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಡು ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಡು ಹಗಡಿ ತೇವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಗಮಗೆನಿಸ್ತೀನಿ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾದ ಕುತಿಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿತುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: Miraculous.
1: मोहम्मद के इदलव मखा हम और ही ग्याम रीत लवे जालाफ में बदल को ले मिहार गड़ींगे गार गड़ी 22 मिनट ही गाफ मने में गड़ींगे कोरे में गिंदनी मिवाह केस मी शो गो मेरे आर्गो में मिदखनी कुम्मद मुझ्ता में बिना कुर्मा कुरमुंद कंत तक आगुले को तुम वाह के तक कम मिदनी दे मेरे के शो गा आर्गो में स्टूडियो गो में थी बेहन आर्गो में माले के को में सरहद कुन शो को ले गेंदनी एनम मेरे में थी भी स्टूडियो गे हम शो गो बैरम के फुर्सत है बैरगो में गे मी एक वेरे हम तेरे नंग हम दुर्गा थी बेहन तेरे ना गुलाला वाह का दक्का ने मैं शो करिए गेंदे बने हम वाह का दक्का ला फर्ग में हमारे ही गेम रितला वे जहाँ फ्रिसत से बदें ये मैं गुलवाल वन अनुर को ला फर्ग में गिरंबर की तिने तिने हाथरे सुमिंग है सुमें है दें शो स्टोरी उन करिए गेंदा थी ननुर को लूँ के फ्रिसत हम और नाने के तो मैं पीएसए में आमे तेरे को वेस्ट डीआर ए नंग वाफ ननुर को ला वेन मैं हार निकास पैवरे का गुलिफ में ते अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
1: कोबा मरता अल की ने
2: Alhamdulillah, kau berpakaian hal kini.
1: Nangal.
2: Masya Allah.
1: Kau berkini musuh, dakkani.
2: Musuh sama besar, bagaikan.
1: Bagaikan bara. Bara, weh, bara.
2: Mihar kuno weh, kau mau deh, nang kau weh bara.
1: Miba guta hutala futi do.
2: Ada.
1: वाला मौसम गोस का मत दे मौसम आ भेज दारे में इसमें मालूम है देवने देंगे बा ये लाठा विस देते नहीं बने रहे था तो
2: आज
1: मेरा कायत भी आ दातुर हाँ
2: रक्कायत भी आ दातुर रक्का भी मैं दातुर लीबेन
1: फस्सी हवाने तो फस्सी वाले
2: आ दातुर फस्सी हवाने दातुर भी मैंने दातुर कुरे भेजने ह
1: मैं मेरे अलग में विवाह के इसमें शो स्टूडियो वागुतुं कुरे गेंदा थी मेरे अलग में हम मैं मर्तमन्ना दें गुलाला वाह दक्कान शो करे में गेंदा नहीं दे मेरे में अती हम हमारा मुहिम मालू एक अलग में मुझ तमाग में हिरा कुत्ता का कुदिंग ऐरागर नमस्ले आगुले को तुम वाह दक्कन नहीं दें कुम्मा तो मुझ तमे बिना कुर मार्ग में न कों का में ही ये कुरे वे नहीं मिया हाल नहीं मैं कुम्मा तो मुझ तमे बिना कुर
2: एको तक देखिए कैसे नॉन ना ले रहा हम्मी मैं
1: यार रहे हम्मी मैं
2: कोड़ा लुई को तक बुने नहीं ना मैं अलग ना बुने भी नहीं हम उम्मा तो आनी ना लो बेले ने मेरे में जेहने एक बार समाल हुआ आदुलू इनसे हम बस जेहने हम
1: गायम करें ना तो
2: एको तक गायम हुआ मैं हार बेले ने मेरे में एक उज्जा उड़ने ही कम पड़े गोताखत को एम्मे बड़ा कुकुरे जा हुन्ना नहीं उज्जा या पूरा वरंगा रंगन ना बोली गया देंग ये नूना उज्जा एम्मे चुटकी रसूले पर आगे कुड़ा कुड़ा ही रसूले पर आगे मिस फिर आनु बे उज्जा या दस को दे मिस बेले ने देंगो बजे है देंग ने क्या वाकी खामुरे मोले देरे नुबाले पूरी
1: हाँ हाँ माँ दो
2: पूरी आ पूरी हम हाँ गुआदा बुद्दे वाकी बे फुले क्या किया था वाकी दो कोल लिया था आ अने बे बे बे पुरुना आदा बुद्दे ही था नहीं हेरी कहाँ लेक अंदर से मैं आर गानू नुगु बंगे उन्ना नहीं इस्लाम दिन का खाना है नहीं ना था ये खिला पर कंधे कुरम नहीं मैं अवे एक कुछ भी वैसी वाणी हँसता है बोलू
1: ऐ मति बुनिवाह के में देहवानी फर्तम ऐ में फर्तम फेवल की गेतरे के माहौल का माशे दें दारिंगे के बाग रीति अखुला गुआश करना उम्मत दे मैं बफ़ेन कौन कम करे बने
2: एक हम लोग सब कुरान जी है एक हम को अखुला गु ओ ये मति या एक उस जहूत सर साई तो ना जो बार रख हम ऐसे लग दागन लग दागस पान रमा है हम दामा ने एम नी में नी गुनगुने क्योंकि एम में पुरे तो ये तेरे ए माहौल रंगल वैसा को बहुत चला देंगे नहीं दिन की बेनी हूँ मैं आदमी इंसाफ गायम करा दे
1: ಶುಕ್ರಿಯ ಹೇಮಲ ವಜಾ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಉಫಾಜ್ ಬದಲು.

बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे के खबरगढ़ प्रोग्राम के मुहिम सुर्खी तो के तेरेगा सरकार फेटे मसिक के तकायक गेंगु कुत्ता मद फवाकम रईस जमहरिया विदारवुं कौम के इक्तिसादी कुरियरमा डिजिटल अदि फंडियात के कुरियरुं तका बैन लाकवामी कुरुं तो के नाजायज फायदा नगा इंसानु नलिबे अनिया तका तकलीफ तकु नफा होदुम के फुर्सत एवस फरात करनु दिनमा रईस जमहरिया इल्तिमास कुरेवुं राज्य के पेमेंट सिस्टम फवरया इंडिया के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई गुलाला सिकुंद कोलेगे तेरेगा इंडिया फैसा फोनवे खिदमे मोलिस मिलिटरी अथॉरिटी इफ्तिताह करुं गजागा गेदरुने मीहुं दिरुलमुंदा सरहद तोगा मीदाफद जनवारु गिनवे बलिफतरा जरासीम आलाउम के सवगुं बलिमुटकमे आमुम के नुरक्का बुडफाकम का अलिफ्ताल के तर्जमान इंजार कुरेवुं अदिवसितर खबरता

0: मुन्ना कोबा की ही ना के देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कोम वड़ा में के दक काफ़ूंग अता
2: मुन्ना थी है बुरा को वैन्ना हिंग कमें ने अफन थी कंको लन्ना
1: तिको तुम हाउ दाई रंगल लाए तिहं मुन्ना एक ही आहो हाल बला फे मुन्ना रकां कंको देन नहे दी मुन्ना वरहा उपावे
0: हेलो कबा मेदु केने
3: वरा रंगल
4: वरा फक्का हम
0: मेदु एहा रंगले नो
4: वडा बलिको
0: देन ने काला गोते
3: हम वरा बेस्ट
4: देन एहा एहा नो
0: एहुन तेरिंगे हाला हुआल ओळुम फिलवाला वाहक दक्कालोम
5: कोमे बुदु दुवे गिरे गाडो एगार गट सु मिनिट का टीवी राजे गाडो केनेस तेनी
0: मेदु कीने
6: एंहा सतरस्ते का 49 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव अधी 89 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड